ये है विविध भारती। झरोखा में लीजिए सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 286, 6:35 से। 6:45 से सुबह व शाम संगीत सरिता, इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का चौथा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा, 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार, आज केंद्रित होगा अभिनेता सैफ अली खान पर, समय सुबह व रात्रि 9:30 से। बजे पिटारा में आज के मेहमान अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल और 1 बजे से सुरीला सफर। बजकर 30 से वक्त होगा सदाबहार नगमे का, दिन में 3 बजे से सखी सहेली, विषय होंगे विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोली, कहानी पद्मश्री में चित्रकार गोदावरी दत्त। मुझे कुछ कहना है में जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, और उपयोगी टिप्स में कपड़ों की उम्र होगी लंबी। चार बजे से पिटारा में हेलो फरमाइश, 5 बजे से सुनिएगा छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने,

6:35 से लेकर आएंगे संध्या रंजन में भक्ति गीत। सात बजे से वक्त होगा फौजी साथियों के लिए जयमाला का। सात बजकर 45 मिनट से

इंद्रधनुष में इनसे मिलिए। गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन, अभिनेत्री से भेंट, लेखक श्री एन राघवन, निर्देशक मुख्तार अहमद। रात 9 बजे से लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम, 10 बजे छायागीत और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 286।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता की इस कड़ी में श्रोताओं आप सबका स्वागत है। स्वागत है श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: आज इस कड़ी में मिश्रा जी कौन सा ताल आप प्रस्तुत करेंगे?
2: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस ताल प्रवाह के अगली कड़ी है हमारी तालों का राजा 16 मात्रा 3 ताल मध्य रेख आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खास बात बताना चाहूंगा श्रोता, हमारा जो अंदाज है बनारस घराना है उसमें हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं पंडित गुरु आचार्य पंडित राखाल मिश्र दास बाबू। वो बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे पिताजी हमारे। 102 साल के थे उनका अंत हुआ और उनकी बड़ी इच्छा रही कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि हमारे सारे भाई गाना गाते थे। बड़े भाई दीनानाथ जी भोलानाथ जी सब गाना गाते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गवैया बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ताल अच्छा लगता था। शायद वो अगर वो नहीं सीखे होते तो हम आज संगीत सरिता में ताल प्रवाह को लेकर नहीं पहुंचते। तो हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी का नाम था पंडित राखाल मिश्र। हमारी माता जी का नाम था चंद्रावती देवी मिश्रा। वो भी हमारे सारे नाना भी गाना गाते थे, दादा दादी भी गाना गाते थे। मैंने ताल को लेकर चुना तो आज हम मध्य लेके और बढ़ते हैं 3 ताल की तरफ। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाइए और इसका मैं कुछ एक अलग अंदाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
1: बहुत

बड़ा प्रचलित है धीरे धीरे की रीतक तबले का अंदाज है। तेरे किटे तक धीरे धीरे किटे तक तेरे किटे तक तुन्ना किटे तक तेरे किटे तक तेरे तेरे किटे तक तेरे किटे तक थन्ना किटे तक तेरे किटे धीरे धीरे धीरे किटे तक तेरे किटे तक तुन्ना किटे तक तेरे किटे तक तेरे तेरे जैसे समंदर में लहर उठता है ना, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ध

0: बात और बताना चाहूंगा मैं दास बाबू। गुदई महाराज
1: जी,
0: उनका ढेकित लाजवाब था
1: जी।
0: गुरु जी का थाप का धिरकिट किशन महाराज जी का, तो घृणक और धिरकिट का अंदाज

अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे इस कायदे को? तो हम तिहाई भी बजा के खत्म कर सकते हैं, टुकड़ा बजा के खत्म कर सकते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा है, धीना धी धीना तीन धी धी धीना धी धी तीन धी धी।

0: कालीना जी, आपने पलटे का नाम लिया, इस सिलसिले में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बनारस के कुछ खास पलटे होंगे, अलंकार होंगे, कायदे होंगे, पेशकार होंगे, फर्द होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: दास बाबू, एक्चुअली बनारस ही नहीं, सारे घराने, अजराला घराना हो, लखनऊ घराना हो, फरुखाबाद घराना हो
0: जी,
1: पलटे तो सब में होते हैं। अगर आप कोई कायदा ले रहे हैं
0: जी,
1: उसको जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो आप कैसे बजा पाएंगे, उसका विस्तार तो करना पड़ेगा मुझे, उसी को कहते हैं पलटा।
0: अच्छा,
1: रहा फर्द का सवाल, तो फर्द एक अलग अंदाज हो गया, वो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो श्रोता, हमने तीन ताल की प्रस्तुति की और मैंने पहले भी कहा था कि शामता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है फिल्मों के लिए। उनका जन्म के बारे में बता दूं कि बनारस के लाजवाब कलाकार थे, उनका नाम था शामता प्रसाद, लेकिन बाएं का ऐसा स्टाइल था, बाएं ऐसा गुदगुदाते थे कि उनका नाम रखे, अनोखे लाल जी का भी नाम रखे और इनका भी नाम रखे विलायत खान साहब, उनका नाम था अनोखा मिश्रा।
0: अच्छा
1: हाँ, पर उनका नादिन धिन्ना ऐसा था अनोखे लाल जी का कि उन्होंने खान साहब ने, विलायत खान साहब ने झाला में रखा कि यार तुम अनोखे हो एकदम। उसी तरह से कि बाएं का काम ऐसा गुदई महाराज जी दिखाते थे, तो उनका नाम गुदई गुदई गुदई गुदई महाराज पड़ गया। तो एक श्रोता हो, चलिए हम थोड़ा फिल्मों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्मी संगीत भी हम सुन लेते हैं थोड़ा उसका अंदाज। तो बड़ा सुंदर गाना है, नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, तो एक बार बजा के सुना देता हूँ। नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, ये खास गुदई चचा का बोल है।

0: भी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी

0: ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत

0: निर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे।

0: और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's

0: এতক্ষণ বাংলা আধুনিক গান শুনছিলেন ইন্দ্রাণী সেনের কণ্ঠে আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন প্রথমে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ এবং এরপরে মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में

0: लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामेटी में कृषि जन कल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नदिया में मादक पदार्थों के खिलाफ 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
5: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये जवानी है दीवानी फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये सफर चित्रलोक का यहीं संपन्न होता है।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

15 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती बेफिक्र अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके।

मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी कच्चे

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से

वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी ना किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं। इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद ना करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

अदाकारा में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं, रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आज।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और

सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सैफ ने बीते कुछ सालों में 20 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल हैं: गो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, कालाकांडी, बाजार और शेफ। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग ली। बदलते दौर के साथ चलते हुए

अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना।

0: के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत

0: सेरिटी से करता हूँ ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
0: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूँ।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
0: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। When I was in Kashmir,
1: जी,
0: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ। पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
1: जी,
0: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था। और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
0: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
0: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
0: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
0: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
0: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
0: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी से संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दे उसके कुछ हिस्से तो
0: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।

0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए, या
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे? फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक जो हमारे प्रोफेसर साहब थे तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा, उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था
0: जी।
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ए मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने
0: जी जी।
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ए मेरे वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा
0: जी।
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बचपन से जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी वो चलता था और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे
0: जी।
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम भाव भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में
0: जी।
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए हर प्रांत हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है, लेकिन इन सब चीजों पर हमने जब वर्क किया तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी

0: नॉर्मल कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है
0: रहने
1: जी
0: वाला है
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल एक जनरलाइज्ड एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे
1: जी
0: हैं। तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं।
0: शिक्षक
1: और
0: रहे हैं, बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल,
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक मतलब ये श्रोता हूं, मैं
1: जी
0: सुनता हूं। जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी
0: सुनूं
1: जी जी
0: या एक और है 107. जैसे जैसे आकाश
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर बदलेंगे हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं
0: नंबर्स
1: कि
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: है।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है ना भाषा है ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हैं, हम
1: जी
0: हमेशा साथ।
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ जाते
0: चलते थे। फिर
1: हैं।
0: मेरे एक ब्रदर हैं चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोड़ते हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए जी
0: लगाने के लिए, और आकाशवाणी का भी विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, उनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे,
1: जी
0: झुकाव था हमारा,
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग ना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
1: हाँ
0: J&K एकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई, और युववाणी में जब हम टीनेजर थे 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा,
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
1: जी।
0: मैं प्लेस

0: पता रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो
1: हाँ
0: होते थे, तो हम हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें
1: अरे
0: प्लेज करते थे। तो
1: जी
0: वहां से कुछ ना कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, कोई ना
1: जी
0: कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं, कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते, तो उस तरह का इस्तेमाल उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से,
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था एक्चुअली, सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग
0: मैं,
1: पड़े थे या निकल पड़े थे? अच्छा
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया।
1: जी
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया। मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था,
1: सीखा।
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है। तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहां पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत
1: जी
0: सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहां हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था।
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ,
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल।
0: साल की उम्र
1: हाँ
0: थी।
1: हाँ
0: तो वहां मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहां पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहां भी रेडियो में, मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं, मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है,
1: नहीं
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: हाँ, और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते
0: रहती
1: थे।
0: थी।
1: जी जी जी
0: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था।
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंटेलिजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूं,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख, उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं हो। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी,
1: हाँ,
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज, वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज
0: के
1: का रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ,
0: मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि

0: आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है, मतलब बेस
1: अच्छा होता है,
0: तो उसमें आप नीचे की तरफ सारा नींद, हाँ नीचे आए, नीचे की तरफ जितना जाएंगे
1: जी।
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खर्च का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब खुलती है
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खर्च का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है
1: जी।
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको।
1: किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए?
0: कोई भी, जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा।
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है
1: जी,
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए
1: जी,
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं
1: जी।
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरी संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का एक मेरे जीवन में योगदान किया है कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है और उसको कैसे साथ में लेके चलना है, तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है
1: जी,
0: मेरी म्यूजिक की सोल। मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है, तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं,
1: खुद खुद के गुरु भी बन सकते हैं
0: खुद क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन हैं, वो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग
1: जी। तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप
0: दीवानापन
1: सकते
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं
1: जी,
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही
1: जी।
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया
0: जी, जी।
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी।
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ, उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया उसमें। गाने तो बहुत सारे हमने तकरीबन बहुत

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन मुंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बम्बई आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं,

0: जाना चाहिए आपको, बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
1: जी जी
0: अब
1: जी,
0: वो है नहीं
1: जी जी
0: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
1: बड़े महंगे हुआ करते थे
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स होती थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे।
1: हाँ।
0: और मेरी आंटी घर पे रहती थी, बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
1: भूल गए।
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय।
1: अच्छा,
0: आई थिंक दैट वाज कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ।
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी,
0: बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ वो मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सच्चू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे। तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी,
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूं और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं। उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोहनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया। महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी,
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने
1: उस समय। इतने सारे सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी।
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं।

0: आपको भी और हमको भी।
1: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा।
0: जी, ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
1: मैं

0: का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
0: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं, मुझे भी खुशी है बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं
0: जी,
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध भारती के श्रोताओं को खासकर उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी

0: चीजें छोड़ भी दी उसको, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं या जो मुझे मतलब समझा सकते थे. मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था. जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया था. तो देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था. तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे. तो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात करते थे
1: थोड़ा और इसको.

0: साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे, तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे मुझे, कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप
0: करते थे
1: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आज से बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी,
0: था
1: जी, बिल्कुल,
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर
1: जी,
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटरक्रूज में भी था जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था, वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं पुलिस वाले का रोल करके मतलब इट इज मुझे मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट, मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है, कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये मेरी अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए चाहे नेगेटिव रोल में, नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल विल सूट मी, तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए
1: जी,
0: देयर हैज टू बी सम सपोर्ट, जैसे आप तो जानती हैं इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी,
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी,
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, क्योंकि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था।
1: अच्छा।
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते थे। तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी,
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहां उन्होंने मुझे आई वाज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहां ड्राइव करके आया तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया, उस कव्वाली है बहुत अच्छी अहमद हुसैन मोहम्मद हसन की गाई हुई आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते
1: थोड़ा सा आप गा के, नहीं आप थोड़ा वही मैं कहने आई थी आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे
0: जो बंद

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारे शॉर्ट्स होने हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं, ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई, उसमें उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 था। अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है। सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे।
1: अच्छा।
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है
1: जी।
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें हैं।
1: आपको आने वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है
0: जी।
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है
1: जी।
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे। और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आप

0: अपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है,
0: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें ढाला है। तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी,
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म। मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं
1: जी,
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
1: जी,
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
1: जी।
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी।
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही
1: जी।
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है जी। तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
1: जी।
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवार्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसे स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है, उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत
1: अच्छा,
0: थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को
1: अच्छा।
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
1: जी।
0: वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा
1: हाँ।
0: तो पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया अच्छा। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
1: जी।
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरौंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
1: जी।
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
1: जी,
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था
1: जी।
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे तो देखा तो वो अंदर
1: लिफ्ट में ही,
0: लेकिन वो नीचे ही मिल गए। तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई, फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए, बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं
1: हाँ।
0: तो मैंने पहला गीत यही गाया था,
1: तो
0: जो मैं दो लाइन आपको सुना के

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, मैं
0: और
1: करता
0: इन सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बंबई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे

0: एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান সপ্তসুরে এতক্ষণ শুনছিলেন মণিপুর রাজ্যের গান আকাশবাণী কৈলাসহর। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে শুরু হচ্ছে একটি হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আজকে শুনবেন দিল জলে ছবি থেকে নেয়া গান। প্রথম গানখানে গিয়েছেন উদিত নারায়ণ।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: चंद फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

0: শেষ গানখানি শুনছিলেন কুমার শানু এবং সহশিল্পীদের কণ্ঠে। অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হলো। আকাশবাণী কৈলা শহর, এখন হিন্দি সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडेम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो, इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, सही लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।

0: संतवतिया हाय संतवतिया ना लाओ शाम पैया परूं संतवतिया ना लाओ शाम।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, फिल्म का नाम शराबी।

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में जारी है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को

0: मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम ये दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। जुलाई में जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण छंद के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का मुद्दा है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। कॉलेजों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जारी पहले के परिपत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कॉलेजों को जारी किया गया पिछला आदेश वापस ले लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। बापू सभागार में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने नव चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। मंत्रियों ने डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय योग को और मजबूत करने पर चर्चा की। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। जातीय संसद में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गाँव में 7 नवम्बर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी, अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय तो सब साथ में होते थे तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किससे बताती हैं उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दूह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिए थे। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ मासियों में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर 2 कोहबर 1 कमलदह 1 दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तलीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पर ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।
2: देखो मौसम
3: क्या

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवन समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है। जो
0: कहते तो है कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल।

0: तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
1: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जाने। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
0: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं
1: था। हाँ,
0: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
1: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
0: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो समय संकट में है, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, और कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि नहीं है, हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
1: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है, और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत, परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है, कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
0: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं जुड़ी हुई, जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
1: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को CDAC के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकते
0: हैं। देखो, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है, उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थी तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था उसका एक अपना रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह

0: महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस, एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि इसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवाय। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सबसे भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए,
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल
0: सी टिप्स
1: उनकी जो
0: हैं?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ही बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना।
0: बिल्कुल
1: तो ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते जल्दी।
1: हाँ, ये
0: तो
1: जो आपने कहा ना, कई बार
0: है।
1: अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ने बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेती है वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसके वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: एक हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं। यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती है कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली

0: नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बन कर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए, बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं, तो क्या हाल चाल है वहाँ?

0: की?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपने ये मकान वकान बनाने का ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी, अभी भी साइट चलती है तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुहाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्र पर संगीत उस 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए
0: आज। जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
0: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, कंजा डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी देती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय?
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप? कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, दिखती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी,
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी हैं, पहले से चला आ रहा लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुमसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है, उसका 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूँ क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी,
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो इसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है, ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह, ये सब फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में हम लोगों के क्षेत्र में। और धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: इसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना वन्ना, ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो, या मतलब लता जी की आवाज में, माई रे मैं कासे कहूँ तीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कंशाल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा।
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी,
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जिले डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जिले डल में जो हाउस बोट होते हैं
0: जी,
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल। तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: एक फिल्म आई है दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी एड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है, तिल्ली खाते हैं, लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी, बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?

0: एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
0: जनाना जना मोरी बाजे सजनिया सगम पम गम।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम करें, बहुत मेहनत का काम करें। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपकी गाड़ी से वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे।
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास नहीं।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारती कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो आप सेहतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी, क्षेत्रीय लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए, अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलती है, की खाने पीने की सब्जी मंडी, वो तो जिला है अपना गुना। तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में, हमेरा प्यार की फिल्म।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं
1: जी। मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम, हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं? तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम, हम 12 साल से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम, हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
0: तो बकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी उधर दुकान एक था, वो दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम, मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है
0: जी,
1: कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
0: बड़ा

0: खूबसूरत हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जिससे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
1: मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रीगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत चैनल है, मैम सबसे जुड़े रहते हैं।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
0: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

का हेलो फरमाइश कार्यक्रम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466 2 यानी 02200024662। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुर लेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने और

0: अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

जब चांद, तारे, चांदनी, नदी, पहाड़, हवा और रात की खामोशी किसी प्रेम कहानी के साथी बन जाएं, तो फिर दूरियां भी मोहब्बत को रोक नहीं पाती। चांद आज भी हर रात निकलता है, हवा आज भी खिड़कियों को छूती है, थपथपाती है, जुगनू आज भी अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, और कहीं ना कहीं दो दिल आज भी उसी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने की दुआ करते हैं। रात का सन्नाटा तब डरावना नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ लगता है।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। तारे उस रात प्रेमी युगल की अधूरी बातें सुनते रहे, जुगनू उनकी उम्मीदों की तरह टिमटिमाते रहे, नदी उनके प्यार की कहानी अपने साथ बहाती रही, पहाड़ उनकी मोहब्बत के गवाह बने खड़े रहे और हवा हवा हर पल एक दिल से दूसरे दिल तक प्यार का एहसास पहुंचाती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन में बंध चुके थे अब।

रात और गहरी हो चुकी थी। भीगी भीगी चांदनी खिड़की से होकर कमरे में उतर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी वो सुंदर सी लड़की कांपती हुई आवाज में आसमान की ओर देखकर फुसफुसाई, सुन रहे हो ना, मैं आज भी उसी खिड़की पर बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, हवा ने अपना रुख बदल लिया। वो पहाड़ों को छूती हुई जंगलों से गुजरी और सीधे नदी किनारे जा पहुंची, जहां वो लड़का बैठा था। हवा ने उसके गालों को धीरे से छुआ। लड़का मुस्कुराया, बोला, हा, तुम्हारी खुशबू आज भी इस हवा में बसी है। रात का सन्नाटा अब खामोश नहीं था, उसमें दो दिलों की धड़कने थी।

उस रात चांद उनका आसमान था, तारे उनकी दुआ थे, हवा उनका संदेश थी, नदी उनकी आवाज थी, पहाड़ उनके सहारे बन गए और भीगी हुई

चांदनी उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाह। उस रात चांद चांदनी बरसाने लगा था, तारे दुआ बन गए थे, जुगनू नदी के किनारे से उड़ते हुए हवा के साथ उस खिड़की तक पहुंच गए। नदी की हर लहर पुकार रही थी, दो दिल एक दूसरे के लिए ठहर गए थे। कमरे के कोने में बैठी वो प्यारी सी लड़की की आंखें अब चमक रही थी, उन आंखों में उम्मीद की चमक थी, हाँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दूरी खत्म होगी, यही चांद, यही तारे, यही हवा हमारे मिलन के गवाह।

हुए विविध भारती है। राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है समीर, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है बरसात।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत अमित कुमार की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी। मिलो जो तुझे बताए। अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
4: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने। फिल्म का नाम है राधा का संगम।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
4: कृषक परिश्रम देशर अन्न भाण्डार समृद्ध है से कृषक पशे रही है किसान क्रेडिट कार्ड চাষের জন্য বীজ সার কীটনাশক সেচ কৃষি যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা পাওয়া যায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পেয়ে সময় মতো ঋণ পেয়েছি, এখন চাষের কাজ সহজ হয়েছে, ফলনও বেড়েছে। আপনিও আজই নিকটস্থ ব্যাংক শাখা বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এবং এর সুবিধা গ্রহণ করুন। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকের শক্তি, সমৃদ্ধ কৃষি, বিকশিত ভারত। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কৃষকের উন্নয়নে এক নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा

0: एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से दो बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: আসুন শুনি ইন্স্যুরেন্সের কিছু গল্প।
2: এক সপ্তাহ ধরে রোজ বৃষ্টি হচ্ছিল, খেতে সবুজ কিছুই ছিল না, ছিল শুধু বন্যার জল। সবার মতো লাখানের ফসলও জলে ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু ও আশা হারায়নি। স্ত্রীর নিরাশ মুখ দেখে ও ভরসা দিয়ে বলেছিল, আচ্ছা কিয়া, ফসল কা ইন্স্যুরেন্স লিয়া, এবার ফসলের লোকসান ইন্স্যুরেন্স কভার করবে।
1: কঠিন সময় সবাই এটাই বলেন, আচ্ছা কিয়া ইন্স্যুরেন্স লিয়া। ভিজিট করুন আচ্ছা কিয়া ইন্স্যুরেন্স লিয়া .com, an insurance awareness initiative by General Insurance Council of India.